0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 0208574777.
0: Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
2: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
1: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
0: Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app. This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777
0: दिस इज सनराइज हिट्स The UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए.
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits को सुनने के लिए शुक्रिया. UK के smoothest Asian hits. हमारे sister station Sunrise Retro को सुनना मत भूलिए. On DAB in London, on the Sunrise Radio app और sunriseradio.com पर.
0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स बैक टू बैक सॉन्ग्स ब्रॉट टू यू बाय साउथल ट्रैवल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान टू दुबई द फार ईस्ट एंड द यूएसए डिस्कवर वर्ल्ड वाइड हॉलीडेज एट साउथलट्रैवल.co.uk

0: This is the UK's smoothest Asian hits. Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. दिस इज सनराइज हिट्स. Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स.

0: Mid-mornings on Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैंनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैंनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: दिस इज सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स.

0: Sunrise Hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर.
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स.

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: Sunrise Hits Back to back songs brought to you by Southall Travel from India and Pakistan to Dubai, the Far East and the USA. Discover worldwide holidays at southalltravel.co.uk.

प्यार का यही किस्सा है। मुरझाने से मैं डरती हूँ, रुक जाती है धड़कन मेरी, सांसें भी सांस नहीं लेती। अब इससे ज्यादा कौन मरे।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.

0: This is Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे, द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 02085747777.
0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.

0: Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Thank you for tuning in to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Don't forget to tune in to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, online at sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, for Radio Player and the Nation Player app.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज सनराइज हिट्स द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा।

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: Sunrise Hits पर आज ही एडवरटाइज कीजिए UK के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स Sunrise Hits सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए एडवरटाइज ऑन Sunrise Hits today. The UK's smoothest Asian hits. Call the Sunrise Hits sales team today on 02085747777.
0: Sunrise Hits.

0: सनराइज हिट्स,
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया। यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन, ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर। सनराइज हिट्स पर आज ही एडवर्टाइज कीजिए। यूके के स्मूदेस्ट एशियन हिट्स, सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए।
0: सनराइज हिट्स, द यूके स्मूदेस्ट एशियन हिट्स।

0: This is the UK's smoothest Asian hits, Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स पर आज ही एडवरटाइज कीजिए यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स सनराइज हिट्स सेल्स टीम को 02085747777 पर कॉल कीजिए
0: दिस इज द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स दिस इज सनराइज हिट्स

0: This is the UK's smoothest Asian hits. This is Sunrise Hits.
1: सनराइज हिट्स को सुनने के लिए शुक्रिया. यूके के स्मूथेस्ट एशियन हिट्स हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेट्रो को सुनना मत भूलिए ऑन DAB इन लंदन ऑन द सनराइज रेडियो ऐप और sunriseradio.com पर. एडवर्टाइज ऑन सनराइज हिट्स टुडे. द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स. कॉल द सनराइज हिट्स सेल्स टीम टुडे ऑन 0208574777.
0: Sunrise Hits.